0: आप ये खबरें NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं। अब आज की बाकी खबरें समाप्त फरमाइए। जापान के निक्के 225 हिसेस इशारिये ने हफ्ते का इख्तिताम रिकॉर्ड बुलंद भाव के साथ किया। सरमायाकारों ने इस नुक्ता नज़र से ख़रीदारी के ऑर्डर्स दिए कि ईरान तनाज़े के खात्मे के लिए मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है। मयारी इशारिया जुमे को मुसलसल दूसरे कारोबारी दौरानिए में तेज़ी से बढ़कर 2.68% के इजाफे के साथ 63,339 पर बंद हुआ। मसनूई जहानत और सेमी कंडक्टर से मुतल्लिका हिस्सेस की कदर में नुमाया इजाफा देखा गया। एंटार्कटिक के हवाले से एक बैन अल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस के शुरका ने इजलास को समेटते हुए खित्ते के पुरअमन इस्तेमाल की खातिर आलमी तआवुन को फ़रोग देने के लिए अपनी कोशिशों का इआदा किया है। एंटार्कटिक मुआहदा मुशावरती इजलास जुमेरात को मगरबी जापान के शहर हिरोशिमा में ख़त्म हुआ। ये इजलास 11 मई को शुरू हुआ था और 32 साल बाद जापान में मुनक्किद हुआ है। इस 11 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में अमरीका, चीन, रूस और यूक्रेन समेत 44 ममालिक के 400 से ज़ायद सफारतकारों, मुहक्किकीन और दीगर माहरीन ने शिरकत की। बातचीत के दौरान शुरका ने इस बात की तस्दीक की कि वो एंटार्कटिका के पुरअमन इस्तेमाल के लिए बैन अल-अक़वामी तआवुन को आगे बढ़ाएंगे। शुरका ने माहौलियाती तगैर से निमटने के लिए कोशिशों को मरबूत करने पर भी इत्तफाक किया। उन्होंने शहनशाह पेंगुइन के तहफ्फुज को तरजीह देने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया, जिन्हें बैन अल-अक़वामी यूनियन बराए तहफ्फुज़ माहौलियात की ख़तरे से दो चार अनवा की सुर्ख फहरिस्त में मादूमियत के इम्कान के ज़ुमरे में शामिल किया गया है। उन्होंने इस बात की भी तस्दीक की कि वो हालिया बरसों में एंटार्कटिका आने वाले सयाहों की बढ़ती हुई तादाद से निमटने की खातिर एक फ्रेमवर्क बनाने के लिए बातचीत जारी रखेंगे। जापान की एक बड़ी सुपरमार्केट चेन अपने सारफीन को तैयारशुदा खाना फरोख्त करने का तरीका बदल रही है, क्योंकि इसे प्लास्टिक कंटेनर्स की बढ़ती हुई कीमतों का सामना है। ईरान के तनाज़े के दौरान प्लास्टिक मवाद की कीमतें तकरीबन 20% बढ़ गई हैं। इतो, यो, कादो, टेम्पूरा और सूशी रोल्स जैसे खाने की उमूमी तैयार अशिया को अलग अलग कंटेनर्स में फ़रोख करती है। प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम करने के लिए ये सारफीन से कहेगी कि वो अपनी मतलूबा मकदार मुंतखब करें और इसे एक ही कंटेनर में रखें। कंपनी का कहना है कि वो ताज़ा गोश्त की कुछ अकसाम के लिए पैकेजिंग पर प्लास्टिक के ढक्कनों का इस्तेमाल बंद करने का इरादा रखती है। इसके बजाय ये किचन रैप इस्तेमाल करेगी। तैयार नूडल्स की पैकिंग को बांधने के लिए इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक फिल्म भी ख़त्म किए जाने का इम्कान है। एक और बड़ी खुर्दा कंपनी इयोन अपनी मसनूआत के लिए कंटेनर्स को सादा बनाने के तरीके तलाश कर रही है। इस तरह के इकदाम मजीद कंपनियों की तरफ से भी अपनाए जाने की उम्मीद है।
1: और आखिर में खास खबरों का खुलासा। एशिया बहरुल्काहिल इक्तसादी तआवुन के 21 रुकन ममालिक के वज़राए तिजारत ने चीन में अपने दो रोज़ा इजलास का आगाज कर दिया है। आज़ाद और खुला तजारती निज़ाम और डिजिटल टेक्नोलॉजी जैसे नए शोबों में तआवुन इसके अहम मौजूआत हैं। इत्तला'आत के मुताबिक तेहरान वाशिंगटन की जानिब से एक नई अमन तजवीज़ पर गौर कर रहा है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने जुमेरात को कहा कि कुछ अच्छी अलामात सामने आई हैं। और जापान के निक्के 225 हिस्से इशारिये ने हफ्ते का इख्तिताम रिकॉर्ड बुलंद भाव के साथ किया। सरमायाकारों ने इस नज़रिए से ख़रीदारी के ऑर्डर दिए कि ईरान तनाज़े के खात्मे के लिए मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है। इसके साथ ही NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरें ख़त्म हुईं।

ये NHK World जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 के

किलोहर्ट्ज़ पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है यूटीसी अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 22 मई शुक्रवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वायला कावानो से सुने समाचार। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग यानी एपेक के 21 देशों के व्यापार मंत्रियों ने चीन में अपनी 2 दिवसीय बैठक शुरू कर दी है। मुक्त एवं खुली व्यापार व्यवस्था तथा डिजिटल प्रौद्योगिकी जैसे नए क्षेत्रों में सहयोग बैठक के प्रमुख विषय हैं। ये बैठक शुक्रवार को पूर्वी प्रांत जियांगसू के सुजो शहर में शुरू हुई। जापान की ओर से अर्थ, व्यापार एवं उद्योग मंत्री आकाजावा योसेई और विदेश उपमंत्री होरी इवाओ प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। प्रतिभागी नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार योजना बनाने और व्यापार व निवेश बढ़ाने सहित कई मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। पश्चिम एशिया के हालातों और चीन की ओर से दुर्लभ धातुओं के निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंधों के मद्देनज़र जापान आपूर्ति श्रृंखलाएं मजबूत करने का आह्वान करना चाहता है। खबरों के मुताबिक ईरान अमेरिका के नए शांति प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बृहस्पतिवार को कहा कि कुछ अच्छे संकेत मिले हैं। समझौते पर पहुंचने को लेकर रूबियो ने सकारात्मक रुख अपनाते हुए कहा, मैं ये बताने नहीं आया हूं कि ऐसा निश्चित रूप से होगा, लेकिन मैं यहां ये कहने आया हूं कि किसी समझौते पर पहुंचने के लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे। रूबियो ने कहा कि वे अत्यधिक आशावादी नहीं होना चाहते, लेकिन आगामी दिनों में क्या होता है उस पर नज़र रखेंगे। रॉयटर्स ने एक वरिष्ठ ईरानी सूत्र के हवाले से बताया कि फिलहाल कोई समझौता नहीं हुआ है, लेकिन मतभेदों को कुछ हद तक कम कर लिया गया है। खबर में कहा गया है कि ईरान के संवर्धित यूरेनियम भंडार को लेकर दोनों पक्षों के बीच मतभेद बने हुए हैं। हालांकि ईरान इस मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट नहीं कर पा रहा है। ईरानी सूत्रों ने रॉयटर्स को बताया कि सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई ने एक निर्देश जारी किया है कि संवर्धित यूरेनियम देश से बाहर नहीं जाना चाहिए। पाकिस्तानी मध्यस्थ शांति वार्ता बहाल करने के प्रयासों में तेज़ी ला रहे हैं। गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने ईरान में कई वार्ताएं की। उन्होंने राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान और विदेश मंत्री अब्बास अरागची से मुलाकात की। खबरों के मुताबिक पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर भी ईरान का दौरा कर सकते हैं। संयुक्त अरब अमीरात से कच्चे तेल का एक टैंकर जापान पहुंच गया है, जहां तेल उत्पादक देशों के साथ मिलकर बनाए गए संयुक्त भंडार को फिर से भरा जा रहा है। जापान सरकार के अनुसार पश्चिम एशिया के बिगड़ते हालातों के बीच संयुक्त भंडार से तेल जारी करने के बाद इसे पहली बार भरा जा रहा है। ये टैंकर शुक्रवार सुबह दक्षिण पश्चिमी जापान के खागोशिमा प्रीफेक्चर स्थित एनेओस कीइरे केंद्र पर पहुंचा। संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और कुवैत को जापान में कच्चे तेल का भंडारण करने की अनुमति है। इस संयुक्त भंडारण कार्यक्रम के तहत आपात स्थिति में जापानी कंपनियों को तेल खरीदने में तरजीह मिलती है। जापान मार्च के अंत से ही इन भंडारों से तेल निकाल रहा है। उद्योग मंत्रालय का कहना है कि इसके चलते 6 दिन की खपत के बराबर का भंडार घटकर 1 दिन का रह गया है। मंत्रालय के अनुसार 1 दिन की खपत के बराबर का तेल और मंगवाया जा रहा है।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: जापान का निक्केई 225 शेयर सूचकांक सप्ताह के आखिरी दिन रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ। ईरान संघर्ष समाप्ति से जुड़ी बातचीत में प्रगति की उम्मीदों के चलते निवेशकों ने जमकर लिवाली की। शुक्रवार को लगातार दूसरे सत्र में इस प्रमुख सूचकांक में तेज उछाल आया और ये 2.68% की वृद्धि के साथ 63,339 पर बंद हुआ। एआई और सेमीकंडक्टर से संबंधित शेयरों ने इस बढ़त में अहम भूमिका निभाई। अंटार्कटिका पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के प्रतिभागियों ने बैठक के समापन पर इस क्षेत्र के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों की पुष्टि की। अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री बैठक बृहस्पतिवार को पश्चिमी जापान के हिरोशिमा शहर में समाप्त हुई। 11 मई को शुरू हुई ये बैठक 32 वर्षों में पहली बार जापान में हुई थी। इस 11 दिवसीय सम्मेलन में अमेरिका, चीन, रूस और यूक्रेन सहित 44 देशों के 400 से अधिक राजनयिकों, शोधकर्ताओं और अन्य विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। चर्चा के दौरान प्रतिभागियों ने पुष्टि की कि वे अंटार्कटिका के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देंगे। प्रतिभागियों ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के प्रयासों में समन्वय करने पर भी सहमति व्यक्त की। उन्होंने एम्परर पेंगुइन के संरक्षण को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर बल दिया। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की एक सूची में विलुप्त होने के खतरे का सामना कर रही प्रजातियों में इस पेंगुइन को लुप्तप्राय श्रेणी में रखा गया है। प्रतिभागियों ने यह भी पुष्टि की कि वे हाल के वर्षों में अंटार्कटिका की यात्रा करने वाले पर्यटकों की बढ़ती संख्या से निपटने के लिए एक ढांचा तैयार करने पर चर्चा जारी रखेंगे। प्लास्टिक डिब्बों की बढ़ती लागत के चलते जापान की एक प्रमुख सुपर बाजार श्रृंखला खाना बेचने के अपने तरीके में बदलाव कर रही है। ईरान संघर्ष के बीच प्लास्टिक डिब्बों की कीमत में करीब 20% की वृद्धि हुई है। इतो योकादो आमतौर पर टेम्पुरा और सुशी रोल जैसी चीजें अलग अलग डिब्बों में बेचती है, लेकिन प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करने के लिए अब ग्राहकों से कहा जाएगा कि वे अपनी पसंद की मात्रा चुनें और उसे खुद थैलियों में डालें। कंपनी का कहना है कि वो कुछ प्रकार के ताजे गोश्त की पैकेजिंग के लिए प्लास्टिक के ढक्कन का इस्तेमाल बंद करने की योजना बना रही है। इसकी बजाय वो क्लिंग रैप का इस्तेमाल करेगी। तैयार नूडल्स के डिब्बों को बांधने वाली चौड़ी प्लास्टिक पट्टी को भी खत्म किया जाएगा। एक अन्य प्रमुख खुदरा कंपनी ईऑन अपने उत्पादों के लिए सादे कंटेनर बनाने के तरीकों पर विचार कर रही है। ऐसे उपाय अन्य कंपनियों द्वारा भी अपनाए जाने की उम्मीद है।
2: और अब अंत में आज के मुख्य समाचार एक बार फिर। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग यानी एपेक के 21 देशों के व्यापार मंत्रियों ने चीन में अपनी 2 दिवसीय बैठक शुरू कर दी है। मुक्त एवं खुली व्यापार व्यवस्था तथा डिजिटल प्रौद्योगिकी जैसे नए क्षेत्रों में सहयोग बैठक के प्रमुख विषय हैं। ये बैठक शुक्रवार को पूर्वी प्रांत जियांगसू के सुजो शहर में शुरू हुई। जापान की ओर से अर्थ, व्यापार एवं उद्योग मंत्री आकाजावा योसेई और विदेश उपमंत्री होरीई इवाओ प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। प्रतिभागी नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार योजना बनाने और व्यापार व निवेश बढ़ाने सहित कई मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। पश्चिम एशिया के हालातों और चीन की ओर से दुर्लभ धातुओं के निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंधों के मद्देनज़र जापान आपूर्ति श्रृंखलाएं मजबूत करने का आह्वान करना चाहता है।
0: इसके साथ ही एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।